ये कौन से रैंडो दोस्त होते हैं जिन्हें हम अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं और सारी जिंदगी उनकी वाहियात हरकतों को कवर अप करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये मेरे साथ ही था उस दिन यार, डोंट वरी।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा।

मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं मिर्ची देसी, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और तुम्हारा मॉर्निंग का रजिस्टर लेकर आई हूँ। मार्क योर सेल्फ प्रेजेंट, बिकॉज शुरू हो चुका है धुआन एंड दी ओनली मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पे सुबह सुबह कॉफी से पहले मिलता है थोड़ा सा गर्मा गर्म गॉसिप, काफी सारा बॉलीवुड का तड़का, थोड़ा सा देसी नॉस्टैल्जिया एंड इनफ बकबक, वो भी काम वाली, दैट विल मेक योर कम्यूट फील लिटिल लेस कम्यूट टाइप एंड अ लॉट मोर फन टाइप। और आज का फंडा पता क्या है, लाइफ में ट्रैफिक, टैक्सेस, रिलेटिव्स, सबके सवाल मिलते रहेंगे, लेकिन तुम सबको इग्नोर करके शॉर्टकट मार मार के आगे बढ़ते जाना, एटलीस्ट तुम्हारे सफर में म्यूजिक तो मर्जीदार होगा। क्या बात है, क्या बात है। सो वेर एवर यू आर लिसनिंग टू मी फ्रॉम, वॉल्यूम को बढ़ाओ और मिर्ची का थोड़ा सा वाइब अपने ऊपर चढ़ाओ और सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला और मुझे तुम फॉलो भी कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: Punjab.

0: पार्टी ओवर गो।
1: मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

आज की डेट के पास कौन सा सीक्रेट पड़ा हुआ है ये पता करने का टाइम आ चुका है. मिर्ची मॉर्निंग्स विद दिस इज प्रिसिला विद यू. और अब हम पता करेंगे कि 1793 में जॉर्ज वॉशिंगटन लेड द कॉर्नरस्टोन ऑफ द यूएस कैपिटल. मतलब कि वॉशिंगटन ने लिटरली कहा था फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. फिर 1810 में चिली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन. Viva la independence. 1850 mein US Congress passed the Fugitive Slave Act, a deeply unjust law that required escaped enslaved people to be returned to their enslavers. Hashtag shameful. 1851 mein the first edition of the New York Daily Times, which became the New York Times later, hit the street. And fast forward to 1927, CBS went on air with 18 radio stations. And look at us now. Radio is still keeping you company. 1947 mein the US Air Force became an independent branch. 1970 mein music legend Jimi Hendrix died at just 27. And 2014 mein Scotland voted to remain part of the United Kingdom. So basically, आज की डेट में दुनिया ने बहुत कुछ किया था और हम क्या करने वाले अभी हम सुनने वाले मिर्ची दार बैंगर्स कमिंग अप राइट योर वे ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं बोले तो प्रिसला तुम्हारे साथ में हूँ. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. गली में

Mirchi. It's hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द वेदर अपडेट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी सुबह सुबह एट अराउंड 8 AM वी आर अबाउट 72 डिग्रीज फारेनहाइट, विच इज फीलिंग क्लोजर टू 74 डिग्रीज फारेनहाइट। नॉर्थ विंड्स अराउंड 6 माइल्स एन आवर है, सो एक छोटा सा लाइट जैकेट कैरी करना साथ में बनता है। By afternoon 1 PM it will be 82 degrees Fahrenheit, so थोड़ी सी गर्मी लग सकती है, and this is also the warmest point of the day. Basically अभी भी winter shopping करने की जरूरत नहीं है, and उसके बाद थोड़ा सा dip होने वाला है, around 4 to 6 PM temperature होगा 80 degrees Fahrenheit, और कोई chance of rain नहीं है क्योंकि overall temperature का range आज है 67 to 82 degrees Fahrenheit with less than 1 millimeter of rain in the last 24 hours. अगले 24 घंटों में 0 millimeters की रेन एक्सपेक्टेड है। तो बाहर अगर निकलोगे, कैरी योर वाटर बॉटल, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर सच क्लोथ्स जिसमें तुम लेयर के प्लेयर लगो, और साथ साथ में अपना SPF 50++++ लगाकर बाहर जाना बिल्कुल मत भूलना, और मिर्चीदार वाइब्स के लिए मिर्ची लगाए रखना है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। सो वेदर यू आर हेडिंग टू वर्क, स्कूल, और जस्ट प्रिटेंडिंग दैट 5 और मिनट बाद मैं उठने वाला हूँ या वाली हूँ, मुझे सुनते रहो। मेरा नाम है प्रिसला, मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची पर मिर्ची आवा का थ्री। सबसे पहले फ्लोरिडा सिटी काउंसिलमैन चैंडलर लैंग्विन टोल्ड इंडियन ओरिजिन कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति टू टेक योर करी एंड गो होम। कृष्णमूर्ति का रिस्पॉन्स इस पर था, आई एम स्टेइंग, सो इज द करी, अमेरिका इज माई होम, एंड ऑनेस्टली दैट कम बैक केम विद साइड ऑफ राइस एंड रेजिस्टेंस। द कांग्रेसमैन ऑल्सो सेड नो वन गेट्स टू डिसाइड हु बिलोंग्स इन अमेरिका और वॉट दे हैव फॉर डिनर। Number two per Indian Ministry of External Affairs has changed passport rules for children under 15. An ordinary 36-page passport will now be valid for 5 years or until they turn 18, whichever comes first. And lastly, Gondhal, directed by Santosh Dawakar, has been selected as India's official entry for the 2027 Oscars in the Best International Feature category. It was chosen from 33 submissions, and this marks the fourth time a Marathi film has represented India at the Oscars. And that was your Mirchi Hour ka 3. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp karo 9033 Mirchi par. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

Hey there, all my birthday babies. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम्हारी मॉर्निंग्स। और आज अगर 18 सितंबर को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, मेन कैरेक्टर एनर्जी तो डिस्प्ले कर ही रहे होगे। अब पता करने का टाइम है कि तुम्हारे साथ कौन से सेलिब्रिटीज अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले वीव गॉट बॉलीवुड रॉयल्टी शबाना आजमी जी, हुज वन द नेशनल अवार्ड 5 times। मतलब बर्थडे केक पर कैंडल कम, अवार्ड्स की कैंडल अगर लगेगी तो मजा ही आ जाएगा। एंड बैडमिंटन स्टार अश्विनी पोनप्पा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है ये। एंड इंटरनेशनल स्क्वाड में जेसन सूर के इस टेड लासो के कोच जरा पिंकेट स्मिथ एंड जेम्स मार्सन, और सोनिक फेम आयशा टाइलर जिसने आर्चर की वॉइस की है। और थोड़ा सा ना ओल्ड स्कूल ग्लैम भी आज मेरे साथ में है। ग्रेटा गार्बो शेयर्स द डेट विथ यू प्लस एक्टर एंड मॉडल पैट्रिक श्वार्ज़नेगर। एंड पास आइकॉन्स में आर्टिस्ट गगनेंद्र नाथ टैगोर एंड फ्रीडम फाइटर मदन लाल ढींगरा भी सितंबर 18 को ही बॉर्न हुए थे। तो आज अगर तुम्हारा बर्थडे है तो बेबी इट्स योर डे। केक खाओ, कॉम्प्लीमेंट्स लो, ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स और ले लो, और कैलोरीज को बोलो यार कल मिलते हैं, क्योंकि आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं होती है। तुम अपने बर्थडे शाउटआउट्स मुझे भेज सकते हो दो इंस्टा और एक्स

हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो जी, टाइम आ चुका है पता करने का कि गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,325. $4,325 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। कल से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड पर है और एक डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार्स के लिए। 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो बार, PAM सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: It's time for Rashi Zone Part 1 on Mirchi Mornings with me, Priscilla.
1: Mirchi Rashi Zone.
0: It is Yanimesh Rashi. Purani identity ya old insecurities knock kar sakti hai. Shut down mat ho na. Baat karo, communicate karo. Aaj silence se zyada clarity kaam karegi. Lucky color for you is coral. Lucky number is 14. Taurus yani ki Rishabh Rashi. तुम्हारा प्लानिंग मोड ऑन हो चुका है, बस एक छोटू सा रोड ब्लॉक आ सकता है. फ्रस्ट्रेट मत होना, प्लान बी भी प्लान ही होता है, इंसल्ट नहीं. लकी कलर इज ऑलिव. लकी नंबर इज 27. जेमिनाई यानी मिथुन राशि, क्रिएटिव आइडियाज फुल स्पीड पर है, लेकिन सोशल सिचुएशंस में थोड़ा सा सेंसिटिविटी रेडार ऑन रखो. हर थॉट को माइक्रोफोन की जरूरत नहीं होती. ओके, लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 6. कैंसर यानी कर्क राशि, अथॉरिटी फिगर आज तुम्हारी स्पीड ब्रेकर बनकर आ सकते हैं. बॉस, पेरेंट, मैनेजर कोई भी हो सकता है. रिएक्शन देने से पहले डीप ब्रेथ लो एंड देन डिप्लोमेसी बाहर निकालो. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 18. लियो यानी कि सिंह राशि, पुरानी बिलीव्स या ओपिनियंस वापस सामने आ सकते. इस बार उन्हें डिफेंड करने के बजाय क्वेश्चन करो. ग्रोथ का मतलब कभी कभी अपने ओल्ड ओपिनियंस को अपग्रेड करना भी होता है. लकी कलर इज मैरी गोल्ड. लकी नंबर इज 31. वर्गो यानी कन्या राशि, ट्रस्ट इश्यूज या गार्डेड फीलिंग सरफेस हो सकती है. हर चीज का फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं होता है, पहले फैक्ट्स को देखो, चेक करो, फिर कंक्लूजन निकालो. लकी कलर फॉर यू इज स्टील ग्रे. लकी नंबर इज 8. एंड दैट वाज योर फर्स्ट 6 राशियों का राशि जोन. अगली 6 राशियों को लेकर मिर्ची मॉर्निंग्स पर आएगी प्रिसिला थोड़ी सी देर में. मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट दीज मिर्चीदार बैंगर्स. और मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033 6472444. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. वेलकम बैक टू राशि जोन पार्ट टू.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आइडियाज तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन एक अनरिजॉल्व रिलेशनशिप मैटर बार बार पॉपअप हो सकता है. क्लोजर चाहिए, कॉन्वर्सेशन करो, माइंड में इमेजिनरी कोर्ट रूम मत चलाओ. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 22. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज लॉजिक से ज्यादा इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना यूजफुल हो सकता है. थोड़ा सा क्वाइट टाइम लो. हर आंसर गूगल पे नहीं मिलता है, कभी कभी गट फीलिंग जो है ना वो भी सर्च इंजन बन जाती है. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, ग्रुप सेटिंग में थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ सकता है और तुम अपनी वॉइस होल्ड बैक कर सकते हो, लेकिन डोंट. अपना ओपिनियन जो है उसको अटेंडेंस शीट पर साइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पीक अप. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 35. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज लीडरशिप लेने से पहले खुद को ग्राउंड करो. सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलोगे तो अपनी चाय ठंडी हो जाएगी. फर्स्ट काम योर सेल्फ डाउन, देन कमांड. लकी कलर इज चारकोल. लकी नंबर इज 4. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पास्ट लेसन वापस आ सकते हैं, बट दिस टाइम यू गेट अ चांस टू हैंडल द सेम थीम डिफरेंटली. सेम चैप्टर, न्यू कैरेक्टर डिवेलपमेंट. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 17. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, आज सेल्फ वर्थ और इमोशनल बाउंड्रीज पर थोड़ा सा फोकस करो. किसी और की अप्रूवल को अपनी वैल्यू का प्राइस टैग मत बनाओ. यू आर नॉट अ क्लियरेंस सेल. ओके. लकी कलर इज ग्रीन. लकी नंबर इज 29. एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट टू विथ मी प्रिसिला. और

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: अरे 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

प्रिसिला तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब मेरा जो है रैप अप का टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बताना तो बनता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टार मिली बॉबी ब्राउन, यस 11, एंड हर हस्बैंड ड्रेक बॉन जोवी हैव वेलकम्ड देयर सेकंड चाइल्ड थ्रू अडॉप्शन। द कपल हैड अडॉप्टेड देयर फर्स्ट बेबी गर्ल ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, एंड नाउ फैमिली में एक और लिटिल मेंबर की एंट्री हो चुकी है। ओह क्यूट। वैसे तो इंटरनेट वॉज ऑलरेडी डूइंग इट्स डिटेक्टिव गिरी। मिली हैड शेयर्ड अ पोस्ट फ्रॉम देयर इटली ट्रिप वेयर ड्रेक वॉज सीन विद अ बेबी कैरियर, एंड फैंस वर लाइक हॉकिंस में कुछ तो हो रहा है। द कपल हैज नाउ शेयर्ड अ स्वीट ग्लिम्स ऑफ देयर बेबी बॉय, जस्ट हिज टाइनी हैंड होल्डिंग डैड जेक्स फिंगर, एंड कैप्शन था सिंपली हाई लिटिल गाय। नो नेम और फेस रिवील येट बिकॉज दे आर कीपिंग देयर किड्स लाइव्स प्राइवेट, विच I absolutely understand. And honestly, from fighting monsters in Stranger Things to mastering diapers, 11 काफी बड़ी हो गई है ना? और अब टाइम के हिसाब से मुझे भी जाना चाहिए, वरना मैं यहीं पर और बड़ी हो जाऊंगी। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब टाटा बाय बाय का टाइम आ चुका है। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। वीकेंड एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, एंड डू कनेक्ट विथ मी। अभी के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: यू नो, हर एक चीज का आखिरी बार तो होता ही होता है, और ऐसे ही वो एक दिन भी आया था हमारी जिंदगी में जब हमने कुछ आखिरी बार किया, और आज ना ऑल ऑफ अ सडन आई कैन थिंक ऑफ दैट डे जब मैंने अब तक आखिरी बार खो खो खेला था।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. हाँ यार, all of a sudden मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने last time खो खो खेला था अब तक, और वो इसलिए याद है क्योंकि हम थोड़े बड़े हो गए थे जब हमने खो खो खेला था। बचपन का टाइम होता तो शायद इतना मुश्किल हो जाता मेरे लिए याद करना कि मैं ना याद कर पाती। एंड ये ना 2015 की बात है, तो 10 साल पहले यानी कि 2015 में दिवाली की छुट्टियों में हम सारे कजिन्स ने प्लान बनाया था कि हम इकट्ठे होंगे, और एक दूसरे को मनाने के बाद जब हम इकट्ठे हुए तो पता नहीं क्यों और कहां से ऑल ऑफ अ सडन खो खो खेलने का प्लान हो गया। एंड माइंड यू, हम सब बड़े हो गए थे तब भी, मतलब कोई कॉलेज में है, किसी की जॉब नई नई शुरू हुई, ऐसा सारा सबका कुछ ना कुछ यू नो अडल्टिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जो बचपना था ना हमारे अंदर वो नहीं गया था, और हमने खो खो खेला। और मुझे आज भी वो शाम याद है यार, इतने मजे किए थे हमने, इतने मजे किए थे कि बस वो जो शाम है ना वो छपी हुई है मेरे दिल और दिमाग पे। लेकिन वो शायद आखिरी बार इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने ना जिंदगी में कदम रखा ही था, सबने कमाई करनी शुरू करी ही थी, अडल्टिंग सबकी शुरू हुई थी, उसके बाद ना सबने लाइफ को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जॉब्स को लेकर इतने नर्वस कि यार अगर छुट्टियां ज्यादा ले ली तो बॉस डांटेगा, काम को लेकर इतने ज्यादा एंग्शियस कि सिर्फ काम में घुसे हुए अब तो फोन पे बात करने का भी टाइम नहीं है। और ना मैं इनको बुरा नहीं कहूंगी बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार होता है शायद ऐसा लाइफ में कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने बिजी हो जाते हैं और आपको लगता है कि जॉब्स ही इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जहां पर आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे मिलना रेगुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो टाइम भी आएगा, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है ना तो आपके लिए भी आएगा, और मेरी जिंदगी में तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि मैं सबको याद दिला रही हूँ ना ये बात। एग्जैक्टली माय पॉइंट। चलो जी, अभी तो फिलहाल मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। और सुनो, एक काम और करो, अगर आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम कोई बचपन का खेल या कोई बचपन का काम किया हो तो DM me डेफिनेटली ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड।

0: डिबेट्स में प्रोफेसर वायरस ने कहा था कि लोगों को ना सिर्फ नंबर वन याद रह जाता है, बाकी और कुछ याद नहीं रहता, और बात बिल्कुल सही है। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि नंबर वन नहीं यार, जो लास्ट किया था ना, जो लास्ट हुआ था उसे मेमोरी में ताजा किया जाए।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And you know, मुझे आज जो कुछ moments ऐसे हैं जो last कभी हुए थे, जैसे कि school का वो आखिरी दिन, यानी कि farewell वाला दिन। Boards का time था, of course, सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, prep leave चल रही थी, school तो हम जाते नहीं थे, और उसी दौरान farewell का time भी आ जाया करता था। और किसी ने ना इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, हमारे जितने भी स्कूल के लोग हैं, सारे के सारे एक छत के नीचे इकट्ठा, ये आखिरी बार हो रहे हैं, इसके बाद नहीं होंगे। किसी ने नहीं सोचा, इतना टेकन फॉर ग्रांटेड था वो दिन, क्योंकि हमारा ध्यान पता है किन सारी चीजों पर था, कि कौन कैसा लग रहा है, और मेहनत भी बहुत की थी यार, ऑफ कोर्स। आई मीन स्पेशली मैंने साड़ी खरीदी थी, जबकि मम्मा के पास पूरा साड़ियों का कलेक्शन है ऑलरेडी, लेकिन फिर मम्मा ने अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत से मुझे एक सिल्वर का लॉकेट भी दिलाया था, और स्टूडियो में ले जाकर फोटो खिंचवाई थी। वैसे पार्लर में जाकर तैयार होने का सीन तब तो इतना था नहीं भाई, तो हमारी जो पड़ोस वाली दीदी थी ना, वही आई थी मुझे तैयार करने के लिए। यस, और क्या दिन था वो वाकई में, खाना पीना, साड़ी संभालते रहना, एंड देन वो वाला सीन भी आ जाता था, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट स्माइल, और पता नहीं कौन कौन से ऐसे हमें टाइटल्स दिए गए थे, और मुझे ऐसा याद नहीं है कि मुझे कोई टाइटल मिला था, लेकिन बात वही है कि हम इन सारी चीजों में इतना इन्वॉल्व थे कि कहीं वो दिमाग में थॉट ही नहीं आया कि ये आखिरी टाइम है जब हम इस तरीके से मिल रहे हैं, और उसके बाद आई स्वेयर हम कभी ऐसे नहीं मिले। एंड दिस डे बिकेम वन ऑफ दोज लास्ट डेज जो मुझे याद रह गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आपके स्कूल का लास्ट डे याद है, तो मुझे डीएम करके बताइएगा और माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल सबसे मैं हूँ टेस्टी सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से दिल का शिकार कर हनी जरा

0: बोर्ड्स का वो लास्ट वाला पेपर वाला दिन, जब हम इतने खुश हो रहे थे कि ये एग्जाम्स खत्म, स्कूल खत्म, हम ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे उस मोमेंट में कि सब कुछ तो खत्म, साथ ही साथ ये रोज मिलना, एक दूसरे को देखना, गॉसिप करना, गप्पे मारना, दिल के छाले फोड़ लेना और दिल हल्का कर लेना, ये भी खत्म।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. और वो दिन एक ऐसा दिन है जो आज भी मेरी memories में छपा हुआ है. Because of the reason कि यार वो आखिरी दिन था जब हमारी पूरी क्लास कॉमर्स सेक्शन जो था वो इकट्ठा था. उसके बाद हम कभी एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिले नहीं. कहीं चार दोस्त मिल जाते हैं, कहीं दो दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी क्लास का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हुआ. रियूनियन में भी सब साथ नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ द रीजन कि सब अलग अलग शहरों में बस गए हैं, किसी की शादियां हो गई हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो सब नहीं आ पाते हैं. लेकिन वो दिन मुझे याद है जब हम खुशी मना रहे थे कि आखिरी पेपर है, आखिरी दिन है स्कूल का, ये मुझे याद है. आज भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए, भीड़ लगाए हुए, सबके सब हो हल्ला करते हुए दिखाई दे रहे मुझे अपनी मेमोरी में आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो. और हम में से काफी सारे लोग जो है अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर गए थे. पहले से डिसाइड कर लिया था हम लोगों ने कि हम अपनी व्हाइट शर्ट्स लेकर आएंगे उस दिन. और मार्कर से सबने उन व्हाइट शर्ट्स के ऊपर मैसेजेस लिखे और लिखवाए एक दूसरे से. एंड दैट्स सच अ क्यूट मोमेंट, आई स्टिल रिमेम्बर. मेरे पास आज भी वो व्हाइट शर्ट रखी हुई है जिसपे मेरे क्लासमेट्स के, मेरे दोस्तों के, सबके मैसेजेस हैं. इनफैक्ट उस व्हाइट शर्ट की उस दिन भी इतनी अहमियत नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब दिस इज लाइक अ ट्रेंड, ये तो करवाते ही करवाते हैं. लेकिन आज उस सिर्फ एक व्हाइट शर्ट जिसकी अहमियत बढ़ गई उन मैसेजेस की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. वो ढूंढती हूँ कभी कभी तो मैं कि कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गई है और उसको संभाल के रखा हुआ है कि यार ये गायब नहीं होनी चाहिए. भले ही कोई नई शर्ट इधर उधर हो जाए, लेकिन ये पुरानी वाली जिसके ऊपर मार्कर से आड़ी तिरछी लाइनों में मेरे दोस्तों ने, मेरे क्लासमेट्स ने मैसेजेस दिए हुए हैं, ये कहीं नहीं जानी चाहिए. वो ज्यादा प्रेशियस हो गई है मेरे लिए. तो सोचो जरा, हम जिस मोमेंट में थे उस मोमेंट में हम कुछ और फील कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि ये मोमेंट अब कभी नहीं आएगा. एंड आई थिंक लाइफ का हर एक मोमेंट कुछ इसी तरीके से, आज भी कुछ ऐसा ही है. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बचपन की यादों में जाते हुए कि आपको क्या ऐसा कोई मोमेंट याद है कि यार वो लास्ट था, उसके बाद तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं. डीएम करिए ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: देवी और सज्जनों, इस डायलॉग से पता लग जाता है कि आप क्या देख रहे हैं।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, कौन बनेगा करोड़पति इज अ शो जो बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन जब इस शो की शुरुआत हुई तो ये शो ने अमिताभ बच्चन के करियर को पुनर्जन्म दिया था। दिस वॉज द टाइम वेन अमिताभ बच्चन वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच और इस शो ने उन्हें फिर एक नई पहचान दी एंड ही बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम अगेन, लेकिन एक नए अवतार में। हालांकि इस शो को शाहरुख खान ने भी होस्ट किया है, लेकिन लुक्स लाइक द ऑडियंस डज नॉट वॉन्ट टू सी एनी वन एल्स अपार्ट फ्रॉम अमिताभ बच्चन होस्टिंग द शो। तो देवी और सज्जनों, 10 बज गए क्या? स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: देखो यार, अभी लाइट रिमोट से या मोबाइल के ब्लूटूथ से बंद हो सकती है, लेकिन एज अ 90s किड लाइट बंद होती थी इस डायलॉग से, जो लास्ट में आएगा वही लाइट बंद करेगा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड एज अ 90s किड यही हमारा तरीका होता था यार, किसी भी कमरे की लाइट बंद करने का, कि खुद तो भाग लो और ये ऐलान करते हुए भागो कि जो कमरे में से सबसे लास्ट में निकलेगा ना, वही लाइट पंखे टीवी बंद करके निकलेगा। लेकिन आज तो लाइफ 360 डिग्री टर्न ले चुकी है। आज लाइट बंद करने के लिए कोई ऐलान नहीं करना पड़ता है, या तो रिमोट यूज कर लो या अलेक्सा को बोल दो, लाइफ सॉर्टेड है। किसने सोचा था कि टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ जाएगी कि लाइट बंद करने के लिए बंदों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी बात पे अल्लाह के बंदे हंस दे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear exam wale revision.
2: यादों को चिट्ठी।
1: बाप रे बाप, टाइम टेबल आता नहीं था कि तुम्हारी एक लिस्ट बन जाया करती थी कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एग्जाम्स पास आते हुए नजर आते थे और तुम हमारे सबसे बड़े साथी बन जाते थे। सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे साथ बैठना, वही पुराने चैप्टर्स को दोहराना, टॉपिक पर टॉपिक टिक करना, जैसे हर बार कुछ नया सीख रहे हो जबकि सब कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ होता था। तुम्हारे बिना तो जैसे एग्जाम्स की तैयारी ना बिल्कुल अधूरी लगती थी। अगर किसी सब्जेक्ट में मैं तुम्हें नहीं लाती थी ना अपने साथ, यानी कि मैंने अगर उस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं किया है, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं एग्जाम कैसे दे रही हूँ। कभी रट्टा मारते वक्त तो मेरा साथ देते थे, तो कभी दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में तुम्हारे सहारे सब कुछ आसान हो जाता था। तुम्हारी वजह से रिवाइज वंस बिफोर स्लीपिंग जैसी सलाहों पर अमल हो पाता था। और वो लाल और नीले रंग के हाइलाइटर्स, वो भी तो कितने इम्पोर्टेंट वाले टैग्स थे। सब आज भी मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। नहीं नहीं, कोर्स मटेरियल नहीं, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल। उस टाइम पर शायद हम ज्यादा ही शिकायतें करते थे, थक जाते थे, लेकिन आज जब वो दौड़ भाग भरे दिन नहीं है ना, तो तुम और तुम्हारा वो साथ बड़ा याद आता है। अब जिंदगी की किताबें बदल गई हैं, लेकिन सच कहूं तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम ना सिर्फ हमारी नॉलेज को दोहराया करते थे बल्कि पेशेंस और मेहनत भी सिखाया करते थे। और शायद तुम्हारे साथ बिताए हुए पल की वजह से ना आज हम लाइफ को भी रिवाइज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली तुम जो हमारे स्कूल टाइम में थे, वो आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद हो। वो अलग बात है कि उस कोर्स मटेरियल के साथ, सीरियस वाले लुक के साथ नहीं हो, लेकिन हो तो सही। तुम्हें याद करती, तुम्हें गुनगुनाती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I did not realize, yaar. शाहरुख खान की चलते चलते विद रानी मुखर्जी वॉज वन ऑफ दोज फिल्म विच वॉज रेयर जहाँ पे हीरो हीरोइन की इतनी जल्दी शादी हो जाती है, एज इन मतलब मूवी चलते चलते शादी हो जाती है, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो सिर्फ लव स्टोरीज ही दिखाई गई है ना, यहाँ पर मैरिज स्टोरी भी दिखाई गई है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And I think ये शायद एक वजह थी कि मुझे चलते चलते उस दौर में इतनी नहीं समझ में आई थी, क्योंकि शादियां किसको समझ में आती थी, रोमांटिक तो हम सब थे, लेकिन शादी मूवी में भी हो जाती थी ना, तो हमारा भी रोमांस खत्म हो जाया करता था। बट यू नो, इस फिल्म की बिहाइंड द सीन्स में भी काफी सारी चीजें जो हुई और हमको नहीं पता है, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ। यू नो, इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस पता है किसको चुना गया था? ऐश्वर्या राय बच्चन को। आई मीन तब वो बच्चन नहीं थी, ऐश्वर्या राय ही थी, लेकिन उनको चुना गया था। मगर उस वक्त उस दौर में सलमान खान और ऐश्वर्या राय वर कपल, और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस थे कि सलमान खान सेट्स पर आया करते थे और कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जिसकी वजह से शाहरुख और सारी टीम को ये लगा था कि यार दिस इज ओनली गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर ट्रबल्स फॉर अस। एंड इवेंचुअली ऐश्वर्या हैड टू लीव द फिल्म, व्हिच ऑल्सो कॉज्ड फ्रिक्शन बिटवीन ऐश्वर्या एंड शाहरुख खान। और मुझे आज भी याद है कि एक्चुअली तब बॉलीवुड के गॉसिप कॉलम्स में ये खबरें ना खूब आ रही थी कि सलमान खान एक मूवी के सेट पर गए और वहां पर ऐश्वर्या से उन्होंने लड़ाई करी, एंड शाहरुख खान वॉज ऑल्सो देयर, एंड शाहरुख खान बीच में, एंड वॉट नॉट, ये सारी की सारी गॉसिप्स थी उस टाइम पर। आज जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो यस, कनेक्टिंग द डॉट्स, इट वॉज समवेयर ट्रू। एंड लेटर ऑन शाहरुख खान ने इस बात के लिए अपना रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया कि ये जो चेंज उनको करना पड़ा था ना, कि ऐश्वर्या को ना लेकर एक दूसरी एक्ट्रेस के लिए तलाश शुरू करें इस फिल्म के लिए, वहां पर उनको बुरा तो लगा ही था। बट ऑल सेड एंड डन, इवेंचुअली द फिल्म वाज डन बाय रानी मुखर्जी। लेकिन जब रानी मुखर्जी स्टेप्ड इनटू द रोल, तब फिर से रानी और ऐश्वर्या के बीच में क्लैश आ गया, बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब चलते चलते ऐश्वर्या को छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस जो उनकी और सलमान खान की रिलेशनशिप में आ रहे थे उस वक्त, तो फिर ये फिल्म कई सारी एक्ट्रेसेस को दी गई थी, लेकिन सम चोज नॉट टू डू द फिल्म जस्ट सो दैट वो लोग ऐश्वर्या के साथ अपने रिलेशनशिप सही रख पाए।
0: मिर्ची

पिटारा। एंड यू नो बड़ी मजाकिया चीज ये हुई कि अमीषा को भी ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन लेटर ऑन इन एन इंटरव्यू अमीषा पटेल ने इस बात को जाहिर किया कि उन्हें काफी टाइम तक ये नहीं पता था कि चलते चलते कभी उन्हें ऑफर की गई थी। हो सकता है वो हाँ कर देती इस फिल्म के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके जो सेक्रेटरी है उन तक ये बात पहुंची थी और उन्होंने इस बात को अमीषा को बताया ही नहीं कि चलते चलते आपके बैग में आ गई है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अमीषा वॉज वेरी बिजी इन दोज डेज। तो या दैट वॉज द रीजन दैट शी कुड नॉट डू चलते चलते। एंड देन उसके बाद ये फिल्म वॉज ऑल्सो ऑफर टू काजोल, लेकिन काजोल डिसाइडेड टू नॉट डू द फिल्म बिकॉज ऑफ द रीजन कि शी न्यू कि ऐश्वर्या वॉज डूइंग दिस फिल्म एंड देयर इज अ सर्टन रीजन जिसकी वजह से उनको ये फिल्म छोड़नी पड़ी है, और इससे उनके और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। तो शी स्टेप्ड बैक, मगर रानी मुखर्जी कुछ ब्रेव निकली। रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय वो बेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम एंड शी सेड यस टू चलते चलते प्रोबेबली विद द कॉन्फिडेंस कि यार हम इतने अच्छे दोस्त हैं और इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज प्रोफेशन एंड लेट्स नॉट टेक इट पर्सनली। लेकिन शायद ऐश्वर्या राय ने इसको पर्सनली ले लिया, सो मच सो दैट कि आज भी कहीं रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय डोंट सी ईच अदर। इनफैक्ट हमने उनको इन पब्लिक भी कहीं भी एक दूसरे के साथ स्टेप इन करते हुए स्टेप आउट करते हुए नहीं देखा है। सो या ये जो बहुत अच्छी दोस्ती थी आशुमा और रानी मुखर्जी, क्योंकि रानी मुखर्जी ऐश्वर्या राय को प्यार से आशुमा ही बोला करती थी, वो टूट गई सैडली। आप एक बात बताओ, अगर आप रानी मुखर्जी या ऐश्वर्या राय की जगह होते तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते? डीएम कर सकते हो मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा है एंड यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। बड़ी लंबी चौड़ी पोएम बन गई यार, बहुत मीटर में बिठा लिया मैंने राइमिंग को। स्टे ट्यून्ड।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कैसेट के साइड बी का दूसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: मिशन कश्मीर का ये गाना जब आया था तो हमें इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन गाना इतना अच्छा लगता था कि बस बाय हार्ट याद कर ली थी इसकी लिरिक्स हमने। Interestingly, this song is actually a Kashmiri folk song, जो एक भवरे यानी कि बुमरो और फूलों के बीच जो रोमांस चलता है ना, उसके बारे में बात करता है। शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और जसपिंदर नरूला की आवाज में दिस गाना sets a vibrant mood। और सिर्फ आवाज ही खूबसूरत नहीं थी, प्रीति भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी इन द ट्रेडिशनल कश्मीरी अटायर, और ऋतिक रोशन इन द पठानी सूट। ओए होए होए होए, बस लड़कों को पठानी सूट में देखना इज वन कमजोरी हम लड़कियों की, नहीं क्या? एनीवेज, इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे, अभी के लिए तो इस गाने को आपकी प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल जो कि है मिर्ची सारा। मैं आपसे मिलूंगी सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। 1 2

इसी गाने के डांस के बाद डायरेक्टर वी आर इशारा साहब को जावेद जाफरी बेहद पसंद आ गए थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ किशोरदा का गाया हुआ ये गाना बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल। वेल ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म मेरी जंग। अब हुआ ये कि जावेद जाफरी को इस गाने में थोड़ा सा डांस करना था, लेकिन जावेद जाफरी साहब का वो थोड़ा सा डांस एब्सोल्युटली एकदम यू नो स्टैंड आउट कर रहा था। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे बी आर इशरा साहब, उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने जावेद जाफरी से कहा कि मैं तुम्हें एक गाना दूंगा सोलो डांस के लिए विच विल बी इन माई नेक्स्ट फिल्म। वो नेक्स्ट फिल्म थी वो फिर आएगी और उसमें जावेद साहब को एक गाना मिला पहला पहला प्यार जानम तेरे लिए। एंड इफ यू गो एंड वॉच द सॉन्ग यू विल लव जावेद जाफरीज डांस, मतलब ओ हो दिल खोल के जो वो नाचे है ना मजा आ जाएगा आपको। और ये उस टाइम की बात है जब एक्टर्स ज्यादा डांस नहीं करते थे, बस हीरोइंस का हाथ लेकर के थोड़ा बहुत घूम लेते थे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, मैं हूँ श्रेया, यानी उस जमाने के गाने उस जमाने की बातें अब शुरू हो जाएंगी। सो ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, अपनी सारी टेंशन को ना एकदम उड़नछू कर दो, क्योंकि इसीलिए मैं आती हूँ यहाँ पर आपके लिए आपके फेवरेट रेट्रो सॉन्ग्स लेकर के। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

अच्छा, जब भी हम लोग ये गाना सुनते हैं तो एक्चुअली में बच्चन साहब की इमेज सामने आती है ना, जैसे वो गमछा अपने सर पे बांध करके जब ये गाना गाते, खाई के पान बनारस वाला, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड इफ आई टेल यू टू इमेजिन कि इस गाने में सोचो अगर सोफेस्टिकेटेड से देव आनंद साहब होते तो क्या होता। शायद देव साहब भी ये बात बहुत अच्छे से जान गए थे। ये गाना एक्चुअली में देव साहब की फिल्म बनारसी बाबू के लिए बना था कि खाई के पान बनारस वाला, लेकिन देव साहब को अपनी इमेज के एकदम ऑपोजिट ये गाना लगा। उन्होंने कहा, भाई मैं पान वान खाता नहीं हूँ और मैं इस गाने पे ये डांस वांस मुझसे होगा नहीं, वो भी पान चबाते हुए। भाई वो हमेशा से यू नो प्रिम एंड प्रॉपर सोफेस्टिकेटेड, थोड़ा सा मफलर वफलर डाल करके वैसे डांस स्टेप्स किया करते थे। सो देन यही गाना फिर गया डॉन फिल्म में और बच्चन साहब ने गमछा सर पे बांध करके, कभी कमर में बांध करके क्या परफॉर्मेंस दी दैट इट बिकेम मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गानों की बातें मेरे साथ यानी इस जमाने की श्रेया के साथ चलती रहेंगी बैक टू बैक। आपको क्या करना है, आपको बस सिट बैक एंड रिलैक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, एक चीज और करनी है, इफ यू वांट टू स्पीक विद मी, अगर कुछ भी बोलना है या फिर मुझसे कोई कंप्लेन है तो वो भी बोल सकते हो एकदम धड़ल्ले से। आरजे श्रेया विद लव इस नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ, डीएम कर देना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रामपुर का लक्ष्मण इस फिल्म का गाना किशोरदा और लता जी की आवाज में ओनली ऑन पुरानी जीन्स, और ये है मेरी यानी आपकी प्यारी श्रेया की आवाज। अच्छा सुनो ना, अगला गाना बहुत ही खास है। सो अमिताभ बच्चन, ये स्टोरी सबको पता है, ऑल द रेट्रो फैंस डेफिनेटली नो कि बच्चन साहब ऑल इंडिया रेडियो गए थे ऑडिशन देने और उनकी आवाज के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। इंडस्ट्री में जब उन्होंने कदम रखा ना, तब भी उनकी आवाज़ के बारे में लोग बहुत बातें करते थे। फिर उसके बाद बच्चन साहब ने बड़े सारे गाने गाए हैं एंड ऑल ऑफ अस नो दैट, लेकिन कौन से गाने की उनके इस टैलेंट की शुरुआत हुई थी, वो गाना मेरे पास है आज। वेल, ये जो गाना है ये राजेश रोशन साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये गाना आप ही गाओगे। बच्चन साहब ने तब तक इससे पहले कोई भी गाना नहीं गाया था एंड ही सेड कि नहीं, मैं कैसे गा सकता हूँ, मेरी आवाज़ के बारे में लोग वैसे ही बात करते हैं कि बहुत एकदम बैरिटोन है और ये है वो है। लेकिन राजेश रोशन ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि ये जो गाना है ये आप ही की आवाज़ में जाना चाहिए। तो कोई भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं लिया गया था एंड दिस वॉज द स्टार्ट जब बच्चन साहब ने गाने शुरू किए थे अपनी फिल्मों के लिए। Well, with song I'm talking about,
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं।
0: मूवी का नाम है मिस्टर नटवरलाल। आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स हैं और राजेश रोशन का म्यूजिक है, बच्चन साहब की आवाज। ओनली ऑन पुरानी जीन्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट। चलो मिलके इनसे एक कहानी सुनते हैं।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? Hmm?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

मूवी का नाम मुकद्दर का सिकंदर, बच्चन साहब की फिल्म। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग रेट्रो लवर्स हैं जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। तो ना एक सीन आता है जिसमें बच्चन साहब स्टेज पे जाकर के एक बहुत ही पेनफुल स्पीच देते हैं। अब हुआ ये कि कादर खान साहब इस फिल्म के डायलॉग्स लिख रहे थे, और कादर खान ने ये जो स्पीच थी ये 16 पन्ने की स्पीच लिखी थी। तो जब बच्चन साहब के पास ये डायलॉग्स गए, ये स्पीच गई 16 पेजेस की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इतनी लंबी स्पीच कैसे बोल सकता हूँ, मतलब देयर इज नो वे कि मैं इतनी लंबी स्पीच याद रख पाऊंगा और उसे डिलीवर कर पाऊंगा। जब ये डायलॉग्स गए प्रकाश मेहरा, हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, उनके पास, ही ऑल्सो सेड कि भाई 16 पन्नों की स्पीच कोई कैसे याद कर सकता है। तो बच्चन साहब ने तो आउटराइटली रिफ्यूज कर दिया कि इसको ना एकदम कट करके शॉर्ट करो, तब जा करके मैं सीन कर पाऊंगा। अब मीनवाइल हुआ ये, क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने काम में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और हर एक के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट थे एंड ही यूज टू फील कि जो इंसान जो कर रहा है वो अपने काम में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने घर जाने से पहले अपनी गाड़ी भेजी और उस गाड़ी से कादर खान जी को बुलाया। जब कादर खान आ गए एंड व्हेन बोथ ऑफ देम मेट, तो ही सेड कि मैं इतनी लंबी स्पीच तो बोल ही नहीं सकता, कैसे याद रखूंगा ये। तो कादर खान ने उनसे पूरे वो 16 पन्ने लिए और उनको ना वो स्पीच बोल करके दिखाई, क्योंकि वो कादर खान की रियल लाइफ पेन पे थी। ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड ही एक्चुअली फेल्ट ईच वर्ड ऑफ द स्पीच। ये देख करके अमिताभ बच्चन जी ने कादर खान को गले लगाया और एज इट इज ये सीन विद दिस स्पीच, 16 पेजेस लॉन्ग स्पीच, इस फिल्म में रखा गया है एंड ये एक आइकॉनिक सीन बन गया था। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की कहानियां बहुत सारी होती है मेरे पास, तो आपको क्या करना है, आपको बस मुझे सुनते रहना है ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रजिया सुल्तान का ये गाना लता जी की आवाज़ में. दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय कमाल अमरोही साहब एंड द एंटायर मीडिया इंडस्ट्री वॉज शॉक्ड. वो इसलिए क्योंकि कमाल अमरोही ने धर्म पाजी को लिया था इस फिल्म में. अब मीना कुमारी जो कमाल अमरोही की वाइफ थी उस टाइम पे, कहते हैं कि उनका और धर्म पाजी के का एक बहुत ही ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग अफेयर था एंड द फिल्म मैगजीन्स वर राइटिंग अबाउट इट. हर एक को पता था कि दे लाइक ईच अदर. फिर कमाल अमरोही का धर्मेंद्र जी को लेकर के एक फिल्म बनाना, ये लोगों के गले से उतरी नहीं थी बात. लेकिन हाँ, दो प्रोफेशनल्स ने एक साथ काम किया था और फिल्म उस टाइम पे कुछ खास चली नहीं रजिया सुल्तान, लेकिन हाँ एक आइकॉनिक, एक मेमोरेबल फिल्म बनी. क्योंकि एट दैट टाइम इस फिल्म को अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात थी. 8 साल लग गए थे रजिया सुल्तान को बनने में. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ऐसे ही उस जमाने के गानों के किस्से चलते रहेंगे. सो डोंट यू गो एनीवेयर, कम राइट बैक.

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

रमेश सिप्पी साहब अपनी हर फिल्म से हीरो नहीं देते थे बल्कि विलिन दिया करते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, आशा ताई क्या, ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म शान, और इस फिल्म से हमें मिले थे कुलभूषण खरबंदा एज शाकाल, और उनका वो जो यू नो बॉल्ड लुक था वो इतना पॉपुलर हुआ था कि मेरे पापा बताते थे कि कॉलेज में भी बहुत सारे लड़के ना एक्चुअली में पूरे बाल शेव करके आए थे। वेल आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि रमेश सिप्पी साहब ने ना भाई आइकॉनिक हीरो से ज़्यादा आइकॉनिक विलन्स दिए। इस फिल्म में उन्होंने शाकाल दिया था शान में, और उससे पहले शोले में उन्होंने दिया गब्बर। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सुभाष गाइस, आपको ये यकीन था कि ये फिल्म चलेगी क्योंकि इसमें ऋषि कपूर है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको कहा था कि ये फिल्म फ्लॉप होगी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सुभाष गाई ने डायरेक्ट की थी फिल्म, जिसका गाना मैंने आपको सुनाया, यानी मूवी है कर्ज। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि उस टाइम पे ना, जब कर्ज बन रही थी, उसी टाइम पे बच्चन साहब को लेकर के या फिर धर्मेंद्र जी को लेकर के ऐसे ना बहुत सारे मल्टी स्टारर फिल्म्स भी आ रही थी और उनमें काफी ज्यादा एक्शन भी दिखाया जा रहा था। सुभाष गाई ये फिल्म बना रहे थे, एक तो हैवी ऑन म्यूजिक एंड ऑल्सो इट वॉज अ रोमांटिक फिल्म, ऑल्सो री इनकारनेशन पे भाई पहली बार कमर्शियल फिल्म बन रही थी। अब ऋषि कपूर के साथ इस फिल्म में एक तो थे राज किरण, हु वॉज नॉट अ स्टार एट दैट टाइम एट ऑल, सिमी गिरवाल की कोई भी कमर्शियल वैल्यू उस समय नहीं समझी जाती थी बिकॉज बहुत सारी फिल्में उन्होंने की नहीं थी, जो की थी एक आध मेरा नाम जोकर, वो इतनी सुपरहिट हुई नहीं थी। टीना मुनीम वॉज येट टू मेक हर डेब्यू बिकॉज उनकी फिल्म देश परदेश रिलीज नहीं हुई थी। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऋषि कपूर के कंधे पर और क्या खूब निभाई उन्होंने ये फिल्म, जो कि फिल्मी पंडितों ने कहा था कि नहीं चलेगी एक ही स्टार पे, वो भी सिर्फ ऋषि कपूर। इस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए थे बॉक्स ऑफिस पे। पुरानी जीन्स पे श्रेया के साथ ऐसे ही उस जमाने के गानों के किस्से चलते रहेंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज स्टे बैक राइट हियर ओनली ऑन मिर्ची

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म में शूटिंग कम पिकनिक ज्यादा हुई थी पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और उस टाइम पे ना लोग ऑफ कोर्स एक्टिंग और शूटिंग और ये सब तो करते ही थे, लेकिन साथ में एक दूसरे के साथ एंजॉय भी बहुत करते थे। सो ये जो गाना आपने सुना मूवी कस्मे वादे का है। ये फिल्म बना रहे थे रमेश बहल, बच्चन साहब थे इस फिल्म में, और रणधीर कपूर थे, राखी थी, नीतू सिंह थी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि बच्चन साहब तो ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली बिजी रहते थे, तो वो इस फिल्म के सेट पर 10 दिन लेट पहुंचे। पूछो क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में थे अपने एक शो के लिए। अब 10 दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि सबके पोर्शंस शूट कर लिए गए और उसके बाद क्लब किया गया, या ना ना ना, 10 दिनों तक सारे कास्ट एंड क्रू मेंबर्स ने एक्चुअली में मस्ती की, पिकनिक की, और उसके बाद जब 10 डेज लेटर व्हेन बच्चन साहब केम तो वो सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे, और डायरेक्टर रमेश बहल के लिए एक अलग तरीके का लाइटर लेकर के आए थे जिससे वो बेहद खुश हो गए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और भी किस्से हैं भाई, तो कम राइट बैक।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mm-hmm.

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और कुछ गाने ऐसे हैं जो इंसान को ना डिफाइन कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किशोर दा को अगर पूछा जाता कि वो कौन सा गाना है जो आपकी जिंदगी को डिफाइन कर दे, जो आपके बारे में सब कुछ बता दे, तो पता है वो डेफिनेटली कौन सा गाना कहते हैं? ये वाला।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी का नाम है इंतकाम और इस फिल्म में थे सनी देओल एंड अनिल कपूर और दोनों के बीच में इतनी भयानक लड़ाई हुई ऑन द सेट। अच्छा बात थोड़ी फनी भी है लेकिन देखा जाए तो थोड़ी ग्रोस भी है। पुरानी जीन्स पे आप हुश रहे आगे साथ। अब एक सीन है जिसमें अनिल कपूर और सनी देओल के बीच में लड़ाई होती है। Now what happened was कि अनिल कपूर पता है क्या कर रहे थे, डेलिबरेटली कर रहे थे या फिर उनसे हो जा रहा था कि जब वो लड़ाई वाला सीन शूट कर रहे थे ना सनी देओल के साथ तो उनके मुंह से बार बार थूक निकल रहा था। सो ही वॉज कंटिन्यूसली स्पिटिंग ऑन सनी देओल्स फेस। तो सनी देओल ने दो तीन बार तो अपना मुंह पोछा और उनसे कहा आराम से डायलॉग बोल। ये सब हुआ लेकिन अनिल कपूर केप्ट ऑन डूइंग दिस। अब ये मुझे नहीं पता कि जानबूझ के हुआ कि हो ही रहा था उनसे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब सनी देओल ने अनिल कपूर को उनके गिरेबान से पकड़ा और बस शुरू हो गया था ढिशुम धड़ाका। फिर पूरे सेट को बीच में आना पड़ा, दोनों को अलग करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब अनिल कपूर ने सीन किया तो उनके मुंह से कोई स्पिट नहीं निकला। तो आप समझ रहे कि ये डेलिबरेट था या फिर हो रहा था। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के किस्से विद मी श्रेया। कम राइट बैक ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कुणाल गोस्वामी और श्रीदेवी जी की पहली और आखिरी फिल्म थी ये, यही जिसका गाना अभी मैंने आपको सुनाया। इसका नाम है कलाकार, मूवी का नाम। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं। वो कहते हैं ना कि कई बार आप सारे मसाले भी डाल दो और आपको लगे कि आपने ये काम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, येट नहीं होता यार वो काम। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इसी फिल्म में, कलाकार में। सो कुणाल गोस्वामी ने एक इंटरव्यू में एक्चुअली में रिवील किया कि ऐसा लग रहा था कि हमने सब कुछ राइट किया है। ये जो फिल्म थी, इट वाज अ रीमेक ऑफ अ वेरी हिट फिल्म। फिर म्यूजिक ऑफ कोर्स, नीले नीले अंबर पर ऐसे बहुत सारे गाने हैं इस फिल्म के जो कि सुपर डुपर रहे। उसके बाद श्रीदेवी वॉज वेरी हॉट आफ्टर डूइंग हिम्मत वाला, मतलब शी वॉज इन डिमांड, पीपल वॉन्टेड टू सी हर, एंड लोगों को लगा था सब कुछ तो अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, फिल्म का रीमेक अच्छा है और एवरीथिंग वॉज इन प्लेस, बट येट फिल्म ने कुछ खास काम नहीं किया। बट आई एम हैप्पी कि फिल्म के गानों ने काम किया, इसीलिए तो उठा करके हैंड पिक करके ले आती हूँ इन्हें मैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।
1: कह

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू गो, बट ऐसे कहाँ जाती हूँ, हाईवे पे आपको लेके जाऊंगी। वेल, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जो चाहते हैं कि उनकी जाना जो है वो थोड़ी देर और रुक जाए, उनसे दो बातें और करके जाए, लेकिन जाना तो घर वापस जाना चाहती है और वो ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहती है लोगों को कि वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप चाहते हैं कि दो से और चार बातें हो जाएं। तो भाई आपके लिए गाना, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक विद मी ऐसे वन टू वन तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल। ऑन दैट नोट, गुड नाइट।

जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ पंजरों का

उनकी लाइफ, ड्रंकन हस्बैंड, फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े आ

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई।

में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ यार, उसको खेलने में जो आपको आजकल मजे आ रहे हैं, बस उस मजे की शुरुआत करते हैं। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे डीएम में जाके इंस्टा पे अपना नंबर भेजना होता है, देन आई गिव यू अ कॉल एंड उसके बाद इस गेम की शुरुआत होती है। आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है सामिया। तो सामिया, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं?
3: मैं गुवाहाटी से हूँ और मैं जॉब करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ फिलहाल तो।
0: ओके, तो आप गुवाहाटी में सुनती है मुझे?
3: हाँ।
0: चलिए फिर गेम की शुरुआत करें, तैयार हैं आप?
3: हाँ।
0: बॉलीवुड की फिल्म जिसमें टफी है,
3: हम साथ, हम आपके हैं कौन,
0: हम आपके हैं कौन में दूल्हे की साली कौन है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: क्या बात है, माधुरी दीक्षित किस फिल्म में चक धूम धूम करती है?
3: दिल तो पागल है।
0: दिल तो पागल है में डांस ट्रूप की लीड डांसर कौन है?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर को किस फिल्म में अपने ड्राइवर से प्यार हो जाता है?
3: राजा हिंदुस्तानी।
0: बहुत बढ़िया, राजा हिंदुस्तानी में ड्राइवर कौन है?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान किस फिल्म में टेररिस्ट बने हैं?
3: जिसमें काजल देख नहीं पाती शायद।
0: हाँ हाँ हाँ, सही है,
3: फना फना, फना।
0: बहुत अच्छे, फना में विजुअली इम्पेयर्ड लवर कौन है?
3: काजल।
0: काजल किस फिल्म में ऑब्सेसिव लवर एंड किलर बनी है?
3: गुप्त।
0: गुप्त में दुनिया हसीनों का मेला, मेले में किसका दिल अकेला है?
3: नहीं पता, ये मैंने देखी ही नहीं है।
0: Never mind. बट कसम से इस गेम को इतने मजेदार लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: सो माय डियर बाबू मोशाय, आज के शो पे हमारी पहली मिर्ची फिल्मची बनी है सामिया। अब इसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मेरी फेवरेट चीज तो बिल्कुल लास्ट में आती है यार।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पिटी उन्होंने आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज डिसाइड कर रही हूँ दुनिया में पाए जाने वाले दो प्रजाति के खाना खाने वाले लोग। सो फर्स्ट आर द पीपल जो अगर अपना प्लेटर तैयार करते हैं खाने का, तो उसमें उनकी जो फेवरेट चीज होती है ना, उसको सबसे पहले खा के खत्म करते हैं। लेकिन जो दूसरी प्रजाति है, भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है इनको और काफी सारा पेशेंस दे के भेजा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने प्लेट में सारी चीजें धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म करते हैं खा के, इस उम्मीद में कि यार बाकी चीजें बकवास लगी तो लगी, लास्ट में जो मेरे मुंह में जाएगा वो तो मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचाएगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। वैसे इन दूसरे कैटेगरी वालों के बारे में इतने अच्छे से मुझे इसलिए पता है, बिकॉज आई एम दैट पर्सन। यार आप अपनी प्रजाति बताने के लिए मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे जरूर कनेक्ट करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखो बॉलीवुड में जब कॉमेडी और एक्शन का तड़का लगता है ना तो कहानी सिर्फ हीरो की नहीं होती।
2: श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
1: बल्कि उन सारे सिचुएशंस की होती है जहाँ हीरो खुद सोचता है कि भाई मैं तो फंस चुका हूँ। और अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुणाल खेमू लेकर आ रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसे उन्होंने लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है और उसमें वो खुद नजर भी आ रहे हैं। एंड द मूवी इज वाइब। फिल्म में कुणाल खेमू के साथ लापता लेडीज फेम एक्टर स्पर्श श्रीवास्तवा भी हैं और साथ में है वंशिका। एंड माइंड यू आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रीति जिंटा का किरदार इन द मूवी। और आज मेरे शो पे है मिर्ची गिरफ्तार इसी फिल्म के किरदार, विच इंक्लूड्स कुणाल खेमू, वंशिका एंड स्पर्श श्रीवास्तवा। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स कंटिन्यू।
4: बरखुरदार आप हो गए हैं मिर्ची गिरफ्तार। मिर्ची गिरफ्तार।
1: ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइज, हेलो एंड हाउ आर यू गाइज फीलिंग? मतलब क्या वाइब चल रही है आपके अंदर ये फिल्म को लेकर? स्ट्रेस्ड हो, रिलैक्स्ड हो, क्या है?
5: देखिए स्ट्रेस का तो ऐसा है कि वो अभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन आई थिंक एक्साइटमेंट बढ़ी है क्योंकि फर्स्ट लुक जब बाहर आई, टीजर जब बाहर आया, उसको जिस तरह का रिस्पॉन्स या प्यार मिला, फिर जब गाना आया, ट्रेलर आया, तो अभी जो वाइब आ रही है वो थोड़ी पॉजिटिव है, एनकरेजिंग है। बस अब यही देखना है कि 18 सितंबर को लोग थिएटरों में आ जाएं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपका बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही आपका रिपोर्ट कार्ड है, वही आपका लिटमस टेस्ट है, वही डिसाइड करेगा कि आपको आगे मौके मिलेंगे ये करने के या नहीं।
1: डेफिनेटली मिलेंगे कुणाल, योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम। अच्छा वंशिका, व्हाट आर योर थॉट्स? फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में हलचल मची है या नहीं?
6: हाँ, तो अभी स्पर्श मुझसे पूछ रहे थे कि यू सो द सॉन्ग, आई सेड, ही सेड योर फैमिली सी द सॉन्ग, आई सेड उन्होंने ऑलरेडी 10 मैसेजेस उस पे डाल दिए कि वाओ वाओ वाओ लव द सॉन्ग। तो मैंने पहले भी यही बोला है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ।
1: डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल। ओके स्पर्श, व्हाट आर योर थॉट्स?
7: रीसेंट थॉट्स, नर्वस, एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड एंड लेट्स सी हाउ ऑडियंस टेक इट। But very, very, very, very, very excited about the film.
1: And so are we. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और आज मेरे शो पे मिर्ची गिरफ्तार है फिल्म वाइब की स्टार कास्ट। ये फिल्म आज रिलीज हो रही है इन द थिएटर्स नियर यू। बाकी इस इंटरव्यू के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं। और इन सारी चटपटी बातों के साथ मैं आऊंगी आपसे कुछ ही देर में वापस, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
8: खाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए, आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप ओए, खुस खुस खुस खुस खुस ओए, खाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़।